अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हूँ आकल विकल पई गुर देखे, हौन लोड पोड होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह संतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मन तन काड दियो गुर आगे, जे हर प्र मार्ग पंथ दिखैया, कोई आण संदेशा दे प्रव केरा, जित अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काड दियो चरणा तल, जो हर प्र मेले मेल मलैया, चाल चल सगी हम प्रबोध, गुण कामन कर हर प्रवलैया, भगत वत्सल उवा को नाम कहित है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया, किमा सीगार करे प्रखुशिया, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस पो करे प्रा मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हार हार हार कंठ गए बनया, मन मोती चूर वड़ गहन गहनैया, हर घर श्रद्धा से वशाई, प्र छोड़ न सके बहुत मन पैया, तय प्रभ आवर आवर किस कीजे, तब बाद सीगार फोकट फोकटैया, कियो सीगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम तेरी तू अगमुख साई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नानक हर गुर शरण समैया, बिलावल मोहल्ला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, क्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मेल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रा मेले, मैं तस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्र देखे बिन नींद ना पैया, वैदक नाटक देख पोलाने, मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया, हाँ खिन पाल रहे न सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमले अमली मर गैया, जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हाँ तस विट्टो बाल बाल कुम गैया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुरु शरण पवैया, तेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जी आवे, प्रब आए मिले कन टील न पैया, कार कर क्रिया चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लू भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया, पिता ताए क्या नाम सवैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर घर भगत जमैया, भगत भगत करते घर पाया, जा हर घर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकुर कृपा थारी, बाह पकर नानक कड़ लैया, राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी कर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जातना कही मेरे प्रभ की, उपमा जातना कही तज आन शरण गही रखाओ, प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कते ना जाहे, हर नाम रसना कहेन, मल पाप कल मल दहेन, चढ़ नाभ संत उधार, पय तरे सागर पार, मन डोर प्रेम प्रीत, ई संत निर्मल रीत, तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार, प्रापेखिये विस्माद, जग अंध पूर्ण साध, न डोलिये एत ऊत, प्रबसे हर हर चीत, तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जमना पिख है नयन, सुन मोहे अनहत बैन, हर शरण सूर गोपाल, प्रा भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, निर करे मुनजन सेव, दुख दीन दर्द निवार, जाकी मां बिगड़ी कार, ताकी मितना

गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे, गए ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ, हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल, मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस, एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए, प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर, जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत, जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास, जो तरन परत परान, जो लोभिगे तन दान, जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग, जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत, जो दीप पतन पतंग, जो चोर हिरत निसंग, मैगल कामे बंद, जो ग्रस्त बखई तंद, जो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए, कुरंक न देने हो, चात्रक चाहत में हो, जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग, रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले, और समूह करत उधार, संसार उतरस पार, हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे, हर पैज रखे मुरार, हर नानक सरण दो।

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवोपाय वेशा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहया परपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाय चारे बेदा खानी चारे बाणी फेदा अष्ट दिशा खट तीन उपाय तो बूझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा वरुण तनानक हमता के दासा पंचमी पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दार कर साचे देख हदूर झूठे को नाही पदनाओ तब न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले पग दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रापावे ता महल बुलावे तब दे फेदे तौ पद पावे कर कर वेश खपे ले जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजरदे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमें मनुआ रहा निभ लाए परुण तनानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महा

जिस लहे मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख होवे सो करे विचार, सच संजम करनी है कार, वर्तनेम निता प्रतूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा, छिन शरवार सौन सात विचार, होमे मेरा परमे संसार, मनमुख अंधा दूजे पाए, जम दरबादा चोटा खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सत करनी सात लिवलाए, सतगुर सेवे से बड़फागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंगराते सहज सुपाए, तू सुखदाता लहे मिलाए, एक से दूजा नाही कोय, गुरम

फिर जो नी पाए गुरमुख जन्म सबल है जिसनु आपे लए मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पले पाए पौड़ी सब डियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याईए जे वस्त मंगिए साई पाईए जे नाम चित लाईए गुज गल जी की चै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाईए गुरपूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाइए जिस पूर्व हो वे लिखिया सो हर गुण गाईए सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रामेल मिलाए सतगुर का दर्शन सबल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है तब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होआ सच वसिया मन आए सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैद पसरिया गुर के सह सुपाए नानक जिन अंदर सच है ते जन छपे ना किसे देश पाए महला तीजा गुर सेवा ते घर पाईए जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची पगज दे होमे मार मलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आ वधाई सेवक सिख सा वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हिरदे पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई क्या होए किसी की चकमारी या सच्चे स्यो बने आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई साब चाख चक मरे लोकाई सलोक महला तीजा त्रिग ए आसा दूजे पाप की जो मुहे माया चितलाए हर सुख पल रत्या गया नाम सार दुख पाए मान मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध ना हो वनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तेस सतगुर मिले तू हर हर नाम थे आए नाम रते जन सदा सुख पाए जन नानक तिन बल जाए महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन होया संसार सब को जम के चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा तू उबर जे बगसे करतार नानक गुरप्रसादी ऊ मन ता तर जा छोड़े अंग

तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी बिलावल, नेत उठ कोरी गागर आन, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूझे, हार हार रस लपटो, हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपूते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडगे खोए, क्यों मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरयो, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरयो बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन प्रसाजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा।

गोविंद भगत को करे सलाम, लूट लेहे सागत पद खोवे, सात जना पग मल मलत होवे, पांच पूत जने एक माए, ओत पुज खेल कर जगत विहाए, तीन गुणा के संग रच रसे, इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास कही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

देव ना यो जति भावे सेव ना यो योगी ना अवधूता ना समाय न काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत न को उपाई रहाओ ना यो गिरही ना उदासी ना यो राज न भीख मगासी ना इस पिंड न रग तू राती ना यो ब्राह्मण ना यो घाती ना यो तपा कहावे सेख ना यो जीवे न मरता देख इस मरते को जे को रोवे जो रोवे तो ही पद खोवे गुर प्रसाद में डग रो पाया जीव मरन दो मिटवाया कहो कबीर यो राम की अंश जस कागद पर।

प्रभाव है आहिर भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रखाओ तुन वाजे अनखद कोरा मन माने हर समोरा और पूरे सच समाया और आद पुरख हर पाया अवनाद वेद गुरबाणी मन राता सारग पानी ते तीर्थ वर्त तब सारे गुर मिलिया हर निस्तारे ते आप गया पो पागा और चरणी सेवक लागा गुर सदगुर परम चुकाया हो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला शादन भोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी दुरमत पद खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज कर वस एक दृढ़ एको कर देखिया भीखिया पाए सब तृप्ता सह रखाओ पंच बैल गडिया दे तारी राम कला निभे पलसारी तर टूटी गाडो सिर पार लकरी बिखरजरी मंज पार गुरका शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बेयोगी उक्त नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज गोटा बंधन ते छूटा ताम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंद्रा हर गुर सरना नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सदगुर प्रसाद राम कली महला तीजा कर पहला सतयुग सच कहे सब कोई धर कर भगत गुरमुख होई तजुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझे को भी चार जो चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागे तो मुक्त होवे गुरबिन नाम ना पावे कोई रखाओ त्रित एक करकी नी दूर वाहन वर्त्या हर जान नंदूर गुरमुख बूझे सोजी होई अंतर नाम से सुख होई द्वापर दूजे दुबदा होए परम पुराने जाने दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रखाए एक पैर चले माया मोह बधाए माया मोह अत गुबार था गुर पेटे नाम उधार था जुग में साचा एक सोई था मैं सच दूजा नहीं कोई साची कीर्त सच सुख होई गुरमुख नाम खाने कोई था जुग में ना उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम।

मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

तरण सबाई ऊपर गगन चंदोआ पंच चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पाद दिखावे सभो निरारी पाखे तार कर नृत होवे दिन राती हरकड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए हुए तूरा कहो नानक

वे परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा ताई मांगे टूका तृप्त ना पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ किरपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपया नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंध रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे सदगुर बाजे अनघ तूरे सदगुर रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर होए निहार देज तीर जाके बंधन का टेराए सो नर भौर न जो नी पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया सगल कुटम ओ जन ले तरया नाज

जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता रखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

तो ही सुख जाना मन असमझ सा संपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत माहे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित हर गाएगे।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमक हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीरज मद पूरा तेज समाद तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदृष्टि पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपगे उतरे।

आन संतोष आया मन पूरा पाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित्र जेवा भगत पाई गत मत तो प्रवान जिस हृदय वसाई नांग तेजन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी न आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरणी आए पई तुण संतो निर्मल विचार आराम ना बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उधार रखाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बिरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी इन्नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कछु ना लहे इसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक ओ तरे राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्वमय पेख पूर्ण पूर आपका पेख रतन अमोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु तू आप पछाण पी अमृत संतन प्रसाद वड़े भाग होवे तो पाईए बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाओ आठ दस बेद सुने कह डोरा कोड प्रगास न दिसता अंधेरा पशु प्रीत घास संग्रच जिस नहीं बुझावे सो किद बुझ जानन हार रहा प्रवजान ओत पोत भगतन संगान बिगस बिगस अपना प्रवगाव है नानक तिन जम नेड़ ना आव है राम कली महला पंजवा दीनो नाम इयो पवित हर तन रास निरास ए बित काटी बंद घर से वालाए हर घर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन

सदा आनंद न हो वी सोग, कहू न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी ही रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार, सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभ के रंग, देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल। हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कहू न बिस।

हर शरण मन तन हर ओई तिहाया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव, जाके किन्ने गए जीव। सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सु हेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, कोन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका यो तान तान सो पर लेवे, अंतर से साधुक पया, अंत काल के साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देव कुटाम्ब माया ग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, क्याले तने बुलाए लया, क्यों कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिवलागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगनपुर लिट समय सार।

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पुनवा हर घर त्याय मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर घर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याना केल खरना ना पुन चरना ना जमकी त्रासहरा बिनवंत नानक राह जन की चरण कमरे आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं जी जंत तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना में जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मान नहीं बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं मुए निर्गुण अनाथ शरणी आया बाल बाल बल गुरुदेव जिन नाम जरड़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर इच्छा पुनिया जलने बुझाई सात आई मिले त्रिव शून्या आनंद हरख सहज साते महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपूरे ते पाया राम कली मोहल्ला पंजवा रुण चुण शब्द अनाहद नेत उठ गायगे संतन के केल विसा दुख मिनासन हर नाम जपिये गुरमंत्रन के हर नाम लीजे अम्यो पीजे रैन दिस आराधिये योगदान अनेक क्रिया लग चरण कमले साधिये पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरे बिनवंत नानक तरे सागर त्याय स्वामी नर हरे सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावे गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख नेरे राम सुख निधान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रवराखिया हर चरण लागा परम पौ भागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही गे प्रभ साजना मिल गए कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाए गे गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारण मोह सोग विकार बिखड़े।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

कचियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कचियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइये सह संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द हमें बिख मारे ता निरकर हो वे वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थ आवे

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गत मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जीया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सदगुर परते परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक को सच एका जाने होमे दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रकाश थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझ है अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप शाने सर्ब जीया साच उपजे साच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझ जिस आप बुझाए गुर कै सब सो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख फूले जमकी कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूस मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सास समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विद जानी गुरमुख पाइये अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभगे सब परवार गुरमुख जपिये अंतर प्यार गुरमुख पाइये शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी इसमें ओपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए साजर तो पास्यों कर जाए साज शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सा बुद्धि गुरमुख पवजल तरगे सच सुधि गुरमुख सार अवसर विद जाने गुरमुख परविरत निर्विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुटे, जीवन मुक्त सो होए, नानक जिसनु बख्से तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोए मोहल्ला तीजा। जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदन गुण गावे सुख सहज, बिग पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन।

सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द संभाले सदगुर की सेवा यो तप प्रवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिस उपायन संसार की वर्तन गुरमति कड़चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए जिसका भोजन नानका विरला पाए कोए महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर भोजन करेन उदरे कारण अपने बैले पेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत बछोड़ेन वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा रैनायर महाय अनंत है कूड़ी आवे जाए भाणे चले अपने बहुती लय सजाए राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विचे गिरे उदास जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुणतास पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत शास्त्र साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी तबे आपे आप वर्तदा आपे बगस मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए जो से रत अपने तेन तन लोभ रत न होए पय पय तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत महल गवाए नानक तेजन सोने जो रत्ते हारंग लाए महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया पवित पंडार परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार देसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार
फिर घर भक्ति सीगार कर निज जम्मे होए खुवार सह सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो जगह संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब तावे आप निचल अचल है होर आवे जावे सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकरवासा पाई है सच सिफत सुमाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कटन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जे वड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होम में जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रख्यों गुरम किसे पे आई वाहो वो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत सास्त प्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवाण पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो झूठ बोलेन कूड़ कु सत कुमांदे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਖਟੇ ਭਾਉ ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਭਾਵੇ ਜਾਓ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸੁਮਾਹੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਹੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾ ਬੇਪੂਤ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁਤ ਗਵਾਈ ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ ਸੂਜ ਨੇ ਊ ਪੜਗਲ ਪਾਵੇ ਤੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਾਉ ਦਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਟਾਊ ਕੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਸਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਸੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰ ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁਡਾਈ ਕੇਸੀ ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰ ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ ਆਪ ਸ਼ਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ ਜਿਸ ਹਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਥੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਰੋ ਕਰੇ ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ ਬੋਲੇ ਈਸਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਜੋ ਤੂਪੇ ਆਪ ਪੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਸੰਤਾਪ ਔ ਹੱਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਚੜੇ ਬੋਲੇ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢ ਤਿਸ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਲੇ ਉਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨ ਦੇਈ ਝਰਣਾ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ਬੋਲੇ ਚਿਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਪੈਰਾਗੀ ਜੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮ
गगन मंडल में रूपे थम आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सत सुमान बोले परतर सत स्वरूप परम तत् मैं रेखना रूप मुखला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीव है ज्योत कन पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ तूप शाम जे सम कर सह।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड़ गवायो, दुर्मद कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलिया, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया तिन

मन तन हिरदे सिमर हर आड़ पैर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा ए सुआओ जन पदार्थ सबर होए मन में लायो पाओ सूग सहज आंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने दिन सरैन तेरा नाव तदा सा जापिए तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिए रोग शोक दुख वंजे जिस नाऊ मन वसे तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रस है खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबे भुली तो सज्जन की मैं कीम न पौंदी हां तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवा।

मैं निर्गुण ते क्या होवे तौ जेवड दातार न कोई जाजक सदा जाचोवे महला पंजवां देश जंदड़ी कौन मजूना।

तन सुतेरा थान है सच तेरा पैसकारिया। नानक तू लेना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया चारे जागे चौ जुगी पंचायण आपे हुआ। आपी ने आप साजियोन आपे ही थम खलोआ। आपे पट्टी कलमे आप लिखण हारा हुआ। ता उम्मत आवन जावनी आपे ही नमा नरोआ। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खेवे चंदोआ।

होगी जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुद्र भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्माल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सह न परसे, देव संसे गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे नानासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाव, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जाग तरह सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन मैं गह, जाग तरह न अलिया पाख है, पांचों इंद्री बस

प्रस्वामी तुम झुट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

पितर सब कीए, जे तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रव कह न सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानको दया प्रवतार हो, हम सेवो तुम जन पगे। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मान जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रतारी, मत गुरमत नाम बने रघाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, केल भग पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो, हम कह न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बो बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुगने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रवडने। नट महला चौथा। मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रतारी, लग सतगुर हर जपने रगाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर उड़ने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने, ए प्रपंच किया प्रस्वामी, साब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल है सरल उठे बहुलहरी, मिल सलल है सलल समणे, जो प्रो किया सो तुम ही जान हो, हम न जानी घर गहने, हम बार्क कहो विपुस्त तारो, हम करे प्रभु सिमरणे, तुम जलनिध हर मान सरोवर,

क्या पावे मन प्यास बौद्ध दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करज पुरख विधाते सो सदा सदा तु त्यावे कवन योग कवन ज्ञान त्याना कवन गुणी रीझावे सोई जान सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमक न प्रभिसरावे संत संग लगे सुख पायो हर गुण सदगी गावे देख अचरज महा मंगल रूप किस आन नहीं दिष्टावे कहो नानक मोर्चा गुर लायो।

जैसा रंग देह सो होवे, क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा, राम गुर सरन प्रभु रखवारे। जो कुंचर तनुए पगर चलायो, कर ऊपर कड़ निस्तारे। रखाओ प्रभ के सेवक।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर रख लियु तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जुदरिया, हर मिल लो कर्म वेदाता, लिलाड़ लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलबुख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान मिल्यो सदगुरु, खिन बंध मुक्त करायो, प्रमस्तके तुर लिखया, गुरमती घर लिवलायो, पंच शब्द दर गए बाजया, हर मिल्यो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिए, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे हर अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो परम पो भागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिख खीन पय सांत आई, हर उतारियो वडभागा, मान मुख रंग कुसुंभ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खिन मैं बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, काया कापर चीर बो फारे, हर रंग न लहे सुपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हर रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया।

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार। रखाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उदार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुल उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत फल पूर्ण काम। रखाओ बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर।

प्रसाद हर समर्थ की सरना जीव पिंड नरास मेरी प्रब एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई सुख मु अस्तूल आल जाल विकार ता सब हर गुणा नित गाओ गचूड़ नानक दान मांगे देव अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समर्थ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किस अंत नाही पार।

कोय, पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली।

ऐसा अधम अजात नाम दियो तौ शरणागत आई अले। सब कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रघाओ। एकल माटी कुंचर चीटी भाजन गए बो नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सवया सारे। परमे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासारे।

निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर नानक शरण तुहारिया।

ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इस नानी, हर गुण पूजे पाती, एको नाम एको नारायण, ते पवन एका ज्योति, जे वा डंडी ओकर शाबा, तुलो नाम अजाती, एको हाट साउ सबना सिर, वणजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु नबेड़े, सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रहे ने प्राती, शब्द विसाए परम चुकाए, सदा सेक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बार कर एको, नानक पया उदासी, राग मारू महला पहला, कर पंजवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, अहिंस जागे नींद न सोवे, सो जाने जिस वेदन होवे, प्रेम के कान लगे तन पीतर, वैद के जाने कारी जियो, जिसनु साचा सिवती लाए, गुरमुख विरले किसे बुझाए, अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का वापारी जियो रघाव, फिर से पी तन प्रेम हरचाए, गुर के शब्द तथा चित लाए, सहसे ती तन खरी सोहेली, तृष्णा तिखा निवारी जियो, सहसा तोड़े परम चुकाए, सहजे सिवती तनक चढ़ाए, गुर के शब्द मरे मन मारे, सुंदर जोगा तारी जियो, होमे जलिया मनो विसारे, जंपुर वजे खड़ग करारे, आपके कहे नाम ना मिलई, तू सो जीड़े पारी जियो, माया ममता पवे ख्याली, जंपुर फासेगा जम जाली, हेद के बंधन तोड़ना सांक है, ताजम करे खुवारी जियो, ना हों करता ना मैं किया, अमृत नाम सदगुर दिया, जिस तू

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रघाव बुरा परा किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत्स पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

पूरे नाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सबास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन रिजास हर गुर विते आप रखे हर मिले गुर साबास सागर भगत पंडार हर पूरे सदगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर परगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दाता रहे ओ मांगो दान गुर पास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमुख हर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईए अकथ कहानी संत जिना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रो तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत श्रद्धा उपजे गुर सबदी हर चार।

आद हर घर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर घर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा सुमाली हर घर नाम जपो मेरे जीवड़े जप हर घर नाम छिड़ावे जियो रखाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देव पसाओ हर सत सत सदा हर सत हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिदर सर्वे अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल ले जावे जियो माया मोह बिख मह पारी क्यों तरगे दुत्तर संसारी सतगुर बोध दे प्रस

असाध रोग उपजो तन पीतर तरतन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओढ़ आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो साचा सोए सुख पाया फिर।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इसते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम देहे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवां।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रखाओ। जम को डांड परे उसरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता हो आपके पछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

बिना को कछ नहीं, गुर पूरे पूरी मदकीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहन न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे,

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लय, गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, साचे बैसन उठना, सच भोजन भाख्या, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा रह चाख्या, साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाख्या, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, पाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद विगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे नेताड़ी, अनहत लाला विद्या, प्रभगेत प्यारी।

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तेल तेल मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कशु जान सर्व जी समत, कर प्रगास प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ तिल ना संका मान, तो पाए अपाए जो निपटे आवे सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने सदा सहज सुपाए, चरण शरण सनात्यो मान।

बेणी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली।

जले पड़कारे मनमुख तके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सो पाई है सचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संघारे ज्ञान खड़गले मन सो लूज है।

तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई होमे गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दूए ती है निर्मल एक निरंजन दाता गुरपूरे ते पद पाई है जो जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहे या मन राता इसकी ओढ़ गही सुख पाया मन तन मैल न काई है जी बरसायन साचे राती हर प्रसंगी पौना प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर तरे पो तरना जात का देखो तेरी सरना दो सुख दे तुहे मन पावे कुछ की सो बने आई है।

आपे बख्श लाए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा फिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुकम करे सा विख है, एक ना बख्श लए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। हौमे तात मोहरस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नहीं पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है।

जलाए सदा मुगत रहे एक रंगी नाही किसे नाल काहा हे बेन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्दे कोई न पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा हे दुख दुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आवरताया गुरमुख होवे सो अलिप्तो वरत मानमुख का क्या वे साहा हे से मानमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के पै की सार न जान है पै बिन क्यों निरपो सज पाई है जम काट लेगा साहा हे अफरो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ न आई शब्द सुने ता दूरों भाग गए मत मारे हर जीव वे परवाहा हे हर जियो की है सब सिरकारा यो जम क्या करे विचारा हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कड़दा साहा हे गुरमुख साचे किया अकारा गुरमुख पसरिया सपा सारा गुरमुख होवे सो सच बूझे सब सचे सो ताहा हे गुरमुख जाता कर्म विधाता जो चारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे न जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा हे गुरमुख नाम शब्द साला हे अगम्य गोचर वे परवाह हे एक नाम जुग चार उधारे शब्दे नाम साहा हे गुरमुख सांस दा सुख पाए गुरमुख हृदय नाम साए गुरमुख होवे सो नाम बूझे काटे दुर्मद फाहा हे गुरमुख उपजे साच समावे नाम अर जमे न जूनी पावे गुरमुख सदा रह रंग राते अन दिल लेंदे लाहा हे गुरमुख भगत सोह है दरबारे सच्ची बाणी शब्द सवारे अन दिन गुण गावे दिन राती सहसे ती कर जाहा हे सतगुर पूरा शब्द सुनाए अन दिन भगत करो लिवलाए हर गुण गावे सद ही निर्मल निर्मल गुण पात साहा हे उनका दाता सच्चा सोई गुरमुख विरला बूझे कोई नानक जन नाम सलाहे बिकस है तो नाम बेपरवाह हे मारू महला तीजा हर जियो सेव अगम अपारा एदा अंत न पाएगे पारा वारा गुर प्रसाद रव्या कट अंतर तिलकड़ मत अगाहा हे समय वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन देंदा रिजक समाहा हे पूरे सदगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पात साहा हे सच्चा सदगुर शब्द अपारा हे दे शब्द निस्तरे संसारा आपे करता कर कर वेखे देंदा सास गिराहा हे कोड़ मध्य किसे बुझाए गुर के शब्द रते रंग लाए हर साला है सदा सुख दाता हर बगसे भगत सलाहा हे सदगुर सेवे से जन साचे जो मर जम्मे काचन काचे अगम अगोचर वे परवाहा भगत वशल आथाहा हे सदगुर पूरा साध रिड़ाए सच्चे शब्द सदा गुण गाए गुण दाता वरते सब अंतर सिर सिर लिखदा साहा हे सदा हदूर गुरमुख जापे शब्दे सेवे सोजन त्राप अन दिन सेवे सच्ची बाणी सब सच्चे ओ माहा हे अज्ञानी अंधा बो कर्म दरड़ाए मनड़ कर्म फिर जो नी पाए बिगिया कारण लभ लोभ कमावे दुर्मद का दो राहा हे पूरा सदगुर पग दरड़ाए गुर के शब्द हर नाम चित लाए मन तान हरवया कट अंतर मन पीने भगत सलाहा हे मेरा प्रभु साचा असर सुंगारण गुर के शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभु साचा सद ही साचा सिर सहा पात साहा हे से भगत सच्चे तेरे मन पाए दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए साची बाणी अन दिन गावे निरतन का नाम साहा हे जिन आपे मेल छोड़े नाही गुर के शब्द सदा सहारा ही सबना सिर तू एको साहेब शब्दे नाम सलाहा हे बिर शब्दे तुदनु कोई न जानी तुद आपे कथी आकाथ कहानी आपे शब्द सदा गुरदाता हर नाम जप संबाहा हे तू आपे करता सृजनहारा तेरा लिखिया कोई ना मेटन हारा।

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम

करे प्रभ अपनी सूझन तसे ते आई है बंधन तोड़ लिगे प्रामोले कर कृपा कीने कर बोले अनहद रोण चुनकार सहज तोन साची कार कमाई है मन प्रतीत बनी प्रा तेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में सोभ सुहाई है जय जय कार्य पो जगदीस बल बल जाई प्रभ अपने ईस इस बिन दूजा अवर न दिस एका जगत सुबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मनराता सेमर सेमर जीवे जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सबे उदाहरण खसम हमारा सिमर ना पुन्नी।

मिल एकत्र वसेद नराती प्रयो दे तने दिलासा हे तन मांगे प्रयो बोब दितावे जो पावे सो आन दिखावे एक वस्त को पहुंच न सके तन रहती भूख प्यासा हे तान करे बिनो दो कर जोर प्रे प्रदेश न जाहो वसो कर मोर ऐसा बंज करो ग्रे पीतर जित उतरे भूख प्यासा हे सगले कर्म धर्म जुग साधा बेनहा रस सु तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन पेर आनंद उलासा हे तन अंधी पर चबल सियाना पंच तत् का रजन रचाना जे वखर को तुम आए हो तो पायो सतगुर पासा हे तन कहे तू वस मैं ना ले त्रे सुख वासी बाल गोपाले तुझे बिनाम हो किदही ना लेखे वचन दे छोड़ ना जासा हे फिर कहया हुक्मी बंदा ओ भारो ठाकुर जे कान ना छंदा जिचर राखे तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊर से दासा हे जो प्रे बजन कहे तन साचे तन कछु न समझे चंचल काचे बहोर बोर फिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासा हे आई आग्या फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊर सधायो शूटर माटी देख नानक मिथन मुहासा हे रे मन लोभी सुन मन मेरे सदगुर सेव दिन रास देरे बिरसा गुर पचमोए सागत निगुरे गल जम फासा हे मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेपना मासा हे गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जे कौन मिटावे जे प्रभ है राया सदा आनंद करे आनंदी जे सिर पाओ पया गल खासा हे हो बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते भजन के सूरे ऐसा प्रा मिलया सुख दाता विछड़ न कत ही जासा हे गुण निदान किस कीम न पाई घट घट पूर रहे हो सब ठाई नानक शरण दीन दुख पंजन हौ रेण तेरे जो दासा हे मारू सोल हे महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कड़ कड़ पूर्ण सिर सिरे नबेरा सिर साहा के सच्चा साहिब और नाही को दूजा हे हरखवंत आनंत दयाला पलट रहे हो प्रभ सर्व उजाला रूप करे कर वेखे विकसे आपे ही आप पूजा हे आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे तिन राती आपे सुन सुन पीजा हे साचा तख्त सची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सत हारे सब साचा सच्चे सच वर तीजा हे सच तपावस सच्चे केरा साचा थान सदा प्रतेरा सची कुदरत सची बाणी सच साहेब सो कीजा हे एक आप तू है वड़ा राजा हुक्म सच्चे के पूरे काजा अंतर बार सब के जाने आपे ही आप तीजा हे तू रसिया तू वड़ भोगी तू निर्वाण तू है ही जोगी सर्व सुख सह

करो दया किरमायणा निर्गुण को संग लेर लाए कर कृपा मुहे टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोये सुख पायना बहुत द्वारे प्रम प्रम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग रख हो यो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरे धरती अर आकाशा सिमरे चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरे सिमरे सगल उपार जना सिमरे खंड दीप सब लोवा सिमरे पाताल पुरिया ससोवा सिमरे खाणी सिमरे बाणी सिमरे सगले हर जना सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेसा सिमरे देवते कोड़ते तीसा सिमरे जख दैंत सब सिमरे अगणत न जाई जस गना सिमरे पस पंखी सा पूता सिमरे बाण पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरे हरा भरिया स्वामी सा मना सिमरे थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरे सिर साधक हर मंता गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे सगल पवन का प्रवतना सिमरे नर नारी आसरमा सिमरे जद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा सिमरे काल अकाल सोच सोचा सिमरे सुन सातर संयोगा अलख न लखिए एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भक्ति लाव जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोड़ न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद वाणी सह तुना सो तनवंता जिन प्रोत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर्व कर्मा नाशिरा जल थल मईल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रो सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊंचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मध अंत प्रतु है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संघ हर कीर्तन गावे।

सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभु का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा सत्य साहिब गैर गंभीरा, कौ नानक सेई जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना। मारू महल्ला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरबाना, हर दाता जी जंत पेखारी, जान बांछे जा चंगना, मांगो जन तूर परम गद पावो, जन्म जन्म की महल मिटावो, दीर्घ रोग मिटे घर औखद, हर निर्मल रापे मंगना। श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी, एक का ओट तजो बिख कामी, निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत ना ही संगना, रसना गुण गावे हर तेरे, मिटे कुमाते अब गुण मेरे, सेमर सेमर स्वामी मन जीवे, पांच दूत ताज तंगना, चरण कमल जा बोत चरिये, संत संग मेरे सागर तरिये, अर्चा बंदन हर संत निवासी, बौड़ जोनना नंगना, दास दासन को कर लेहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला, सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न हो भी पंगना, मान तन अर्प करी अरागे, जन्म जन्म का सोया जागे, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत्यागी हो में हंतना। जल पूर्ण अंतर जामी, खड़का रवे अशल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरे, एक रवे असर मंगना, जल कद पेखो प्रभ सुख सागर, हर तोड़ भंडार नाही रतनागर, आगे अगा कश्मित नहीं पाइये, तो बूझे जिस किर पंगना, जाती शीतल मन त ठंडा, जन्म मरण की मिटवी डंजा, कर गे काढ़ लिगे प्रवे अपने, हमें तार धिर टंगना, एको एक रवैया सब ठाई, जिबन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रवरवया, कृष्ण बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर कर्ता गुर सदभग संद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना, जो पेखा सो सबके स्वामी, जो सुनना सो प्रभु की बानी, जो किन्नो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना, जातक जाते तुम्हें आराधे, पद पावन पूर्ण प्रसाद, एक को दान सर्व सो गुण निध, आन मंगरन है किंचना, काया पात्र प्रभु करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बनी घर बाणी, मन नाम जीठे रंगना, सोलह कला संपूर्ण फलया, अंत कला हुए ठाकुर चढ़या, अंध विरोध हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना, मारू सोलह महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तू साहिब हो सेवक कीता, जीव पिंड सब तेरा दीता, करन करावन सब तू है, है नाही किस असाड़ा, तुम्हें पठाए ता जग में आए, जो तो पाना से कर्म कमाए, उते बाहर किसी

चक्र पाण दर्श अनुपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब गये मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल गये साथे बाधेव नरंजन दाते वर्ण साको गुण अंगा मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा विसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी, तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास वारे, सास ग्रास सुमाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुगुनौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत वेद बखाणी,

कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उतही ठाए, नानक मन त्रिवता सीए सिवती साचे नाए। महला तीजा आपे करनी कार आप, आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए। नानक चानन गुर मिले दुख बिगजा ली नाए पौड़ी, माया वेख ना पुल तू मनमुख मूर्खा। चलद्या नाल ना चलई सब झूठ दर्ब लखा, अग्ञानी अंध ना बूझई सिर ऊपर जम खड़ग कलखा। गुर प्रसादी उभरे

मंगिए सो दर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फेर जन्म बिनास गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरास सिमरत सास्त सोध देख

कीमत कहे कौन, तो सृजा सब संसार, तू नायक सगल पौन, तेरी कुदरत कोई ना जाने, मेरे ठाकुर सगल रावण, तू अपड़ कोई ना सके, तू अविनाशी जग

पसंदो हरियो थी ओस महला पंजवा मेरी मेरी क्या करे पुत्र कलत्र स्नेह नानक नाम विहूणिया ने मुनिया दी देखे पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हथ अकाल मूर्त हृदय त्याएदा दिन रहन जपंत मैं छड़िया सगल अपायनो परवासे गुर समर्थ गुर बख्शिया नाम निदान सबो दुख लथ भोगो पुंचो पाई हो पल्ले नाम अगत नाम दान इस नान देड़ सदा करो गुर कथा।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भज जाके रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर हरना जब सरसना, अवर सब शाढ़ बजन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देसो तू पला, हार जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निगाले सातन, तू सुनया तमरामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले, अंक सुमाणिया हर अंक सुमाणी जा प्रा पाणी,

चतर सुजान विधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रपाणे ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन

अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे विण नावे को संग न साथी आवे जाए कनेरी नानक लहा लय कर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश विदेशी अड़े सानेड़े दिन दी सार समाले तिन सा

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीव गए राम जब लग दर्शन।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारिये सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपर

पंथ चले घोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खड़ दर्शन कर गए गोष्ट ठोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हो।

सगुरु पिछे जिन हर घर नाम ते आया, गुरबचन मार्ग जो पंथ चाले, तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले, गुर के नाए लये सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गोर, हर घर जपन किया, तृतीया आए सुर।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल।

रूप रंग रस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ। तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी।

किरतार्थ सहज ध्यान लिव लाइए, मन रे राम भगत चित लाइए, गुरमुख राम नाम जब हिरदे, सह से ती कर जाइए रघाओ, परम भेद पौ कभू न छूटस, आप जात न जानी, बिन घर नाम को मुक्त न पावस, डूब मोए बिन पानी, धंधा करत सगली पद खोबस, परम न मिटस गुवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद बसारा, अकोल निरंजन स्यो मन मानिया, मन गीते मन मूआ, अंतर बहा एको जानिया।

आकारा घट वध को करे बिचारा तहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गरीब पंडित पेख तारी इस उते अपने अहंकारी माया मदमाता रहे आसोए जागत रहे नामूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जाने।

होए, निकर वसे सहज सुभाए, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन्ने सेजन प्रवान।

केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया, सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है, तेन निकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक, जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु, ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा, मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा, गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर सबदी विचारा। हर जियो

इनका दर्स देख मन बिगसे खेन खेन तिस को होम बलिहारी हार हृदय जापो नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पे स्वामी हम दासन दास कीजे पनिहारी रहाओ। तेन मत उत्तम तेन पद उत्तम जिन हृदय वसिया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तेन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधन पाया ते हर दरगे काडे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तेन नग काटे सिरजनहारी और आप बुलावे आपे बोले और आप निरंजन निरंकार निराहारी और जिस तू मिले सो तू मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी। भैरों महला चौथा सत्संगत साई हर तेरी जे तर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरेवे निरचरणे जग जीवन हर ध्याए तरणे।

प्रसरणागत्याय भैरों मोहल्ला पंजवा कोड मनोरथ आवे हाथ जम मार के संगी पांथ गंगा जल गुर गोविंद नाम जो सिमरे तसकी गत होवे तीर्थ बौड़ न जोन परमाम रखाओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पय ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूर्ण आचार नानक दास यो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सबसार भैरों मोहल्ला पंजवा लेपना लागो तिलका मूल झुट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रखाओ अपना खसम जन आप तिहाया याना पापी ओ आप पचाया प्रा मात पिता अपने दास का रखवाला निंदक का माथा ईहां ऊहां काला जन नानकी परमेश्वर सुनी अर

श्री धर्म हुन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रशोड करे अनसेवा तुम बिखिया रस माता अरे मन मेरे तू गोविंद पाज आवर उपाव सगल मैं देखे जो चितविए तित बिगर सकाज रखाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमर है मानमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करे ते निंदे निगुरे पशु सुमाना जियो पिंड तान तान सब प्रभ का स्वागत कहते मेरा अंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जाब तब सब संयम तड़ तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नान।

काम रोग मैगल बस लीना, दृट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खब गए कोरंगा, जो जो दिसे तो सो रोगी, रोग रहत मेरा सदगुर जोगी रहाओ। जेवा रोग मीन ग्रस आनो,

सवारी मिट्यो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा मोहे पेटे कंत रगाओ तब्त बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर पए परगासा अनघ शब्द अज

प्रवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा। जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा। भैरों महला पंजवां।

नाटे, सुख नाई बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साह संग पागे वड़पागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता, बंधन कर्म तर्म हो करता, बंधन काटनहार मन वसे, तौ सो पावे निज कर बसे, सब जाजक प्राजे मनगार, गुण निदान बेंत अपार, जिसनु कर्म करे प्रव्यापना, हर घर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कौ नानक तुमरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई, भैरो महला पंजवां, गुरमुख त्यागो दूजा पाओ, गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कार कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेड़त मन पया आनंद, सर्वन दान नाम भगवंत, जन मरण की मिटी जमत्रास, साध संगत हूंद कवन विगास, गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलभ दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी, भैरो महला पनवा, तब ते ऊंचा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जे सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख बसे मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए, रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार, जी जंत देवे आहार, कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा तन साची वड्याई,

हर चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ हरहाओ हर सिमरत किस चाख ना जोह हर सिमरत दायत दो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जोन ना रुद्ध हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बो माई अकेला जात जात जपे जन कोए जो जापे तिसकी गद होए हर का नाम जपिगे साध संग।

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक कहे मन इहो पुरखार्थ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ भैरो महला पंजवां पय को पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याज मिट्टी त्रिव गुण की दास के होए पूर्ण काम रखाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिले आ पूर्ण।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

राख रह माना सब कोई चलन कहत है ऊहा ना जानू बैकुंठ है कहा अरहाओ आप आप का मर मन जाना बातन ही बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग ना ही।

जन कबीर को जोर न पहुँचे, कहाँ करो रग राया, ताम किवारी दो सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर धन पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी।

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज जैसी।

साखा हरी धर्म फूल फल ज्ञान पद प्राप्त शाप कणी चूका मन अभिमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ भागे पौन।

भगत वछर हर वस्ते मन आए, गुर कृपा ते सहज सुभाए, भगत करे विचों आप खोए, तद की साथ मिलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रद्वार, गुर कह हित साचे प्रेम प्यार, अरहाओ भगत करे सो जान निर्मल होए, गुर सब जी विचो होमै खोए, हर जीव आप से मन आए, सदा शांत सुख सहज समाए, साच रते तिन सब

गुर शब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रम मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हारस पुन्य रहाओ सत संगत साध दया कर मिल हो शरणागत साधु पान्य हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पान्य हर उस्त तारो रिद अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लान्य हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटों कोम वान्य जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लान्य जन नानक मन तन अंध पया है गुर मंत्र दियो हर पान्य बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार।

पूछ जना सो तपसी जे साध संग सत्यानी जे गुरे रंग से निरपो जिन पौ पया सो सुखिया जे प्रम गया सो एकांती जिरदा थाए सोई नेचल साज ठाए एका खोजे एक परीत दर्शन परसन हीत चीत हारंग रंगा सहज मान नानक दास ते जन कुर्बान संत महला पंजवा जी प्राण तो पिंड दीन मुग्ध सुंदर तार जोत कीन सब जाजक

काट काट रयासमाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खय, जाके भगत को नाही पय, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुख दाता प्रवरयो समाय।

साधु संगत गुरे बताई, ऊहां जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना, नानक गुरमिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत

दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कार कृपा मुझे देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जन किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई एक मन एक पाए। गुर पूरे की सदा सरनाई, साचे साहेब रखिया कंठ लाए। रघाओ अपने जान प्रभ आप रखे, दुट दूत सब प्रम थके। बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख दे संतर रहे ताए। किरत ओ ना का मिटसनाहे, कोई अपना बीजिया आप खाहे। जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सक सकोए। प्रभ दास रखे कर जतन आप, अखंड पूर्ण।

माया सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जब जीवे नानक राम नाम, सारुत सुहावी जिद हर चित आवे, बिन सदगुर दिसे बिल लांती सागत, फिर आवे जावे रगाओ, से तनवंत जिन हर प्रवरास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पै बिन से निरपय पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो लिवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रहब रया, गुर मिल नानक हर हर कहया, हरिट सिद्ध।

कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रहाओ। सब सुपने कै यो जग जान, बिन से शिन में साची मान, संग तेरे हर बस्तनीत, निज बासर पजता हे मीत, बार अंत की होए सहाए, कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला, अष्टपदिया कार पहला, दो तुकियां एक ओंकार, सदगुर प्रसाद।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पूल

तय लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ये देही के अधक काम, कह कबीर पज राम नाम, जो एक खसम है जाया, पूद बाब खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुत मुकलाई अपनी माओ, रहाओ पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नरपे सोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, ओ कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सका बोलिए बाल, मोको का पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे

काहे को न बगूतो मैं को आहे माधो दारन दुख सहयो न जाए मेरो चबल बुद्ध स्यों कां बसाए अरहाओ सनक सन

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मेल सतसंगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रखाओ सतगुर संत मिले संत पाईए

के निगट निगट हर निगट ही बसते ते हर के जन साधु हर भगात ते हर के जान हर स्यों रल मिले जैसे जान नानक सरले सल मिलात आरंग महला चौथा जापमान नरहरे नरहर स्वामी।

प्रीतम जन संतो मोए मार्ग दिखलावे। तिस जन के हों मल मल धोवा पाओ। हर जन को हर मिलिया हर श्रद्धा ते मिलिया गुरमुखर मिलिया। मेरे मन तन आनंद पए मैं देखिया हर राव। जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीशर कृपा पई। मैं अनदनो साध साध सदा हर जपिया हर नाव। सारग महला चौथा जप मन निरपो सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूर्त आजोनी।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान। सहसृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम, राम राय सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की। सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाव्या तू थाओ, दैज जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख ते

दीजे साध संगत कृपानंद, नानक पूर रहो गए सर्ब में सगल गुणा विद जानद। तारग मोहल्ला पंजवा, आप मोहे आराम परो सो पाए, जो जो शरण परो करना निध, ते पवे तराए रहाओ, सुख सोयो अर सहज सुमायो, सहसा गुरे गवाए, जो चाहत तोई हर कियो, मान बांचत फल पाए, हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, त्रवणी कथा सुनाए, चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए, देख्यो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर, तोड़ न कतहु जाए, तम उपमा कौन बढ़ाई, क्या गुण कौरी जाए, होद कृपाल दीन दयाल प्रभ, जन नानक दास दिसाए।

गर्भ जोन छोड़ जो निकसो तव लागो अनठाही करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परे कुसुमाही तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिशरत होत मृत का गृह मय रहन न पाई रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई करो कृपा संतो मोए अपनी प्रा मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई जे प्रसाद मिल गए प्रभ नानक बल बलता के हो जाई सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई आड़ पर अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई रखाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम दे सुमदरसी रविदास ठाकुर बने आई जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संतरे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे।

मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिस गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग

साध समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवार महापत्ते पातक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जो दरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रखाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो

सुखदाता होए सगल खलासी रघाव आवर न को सूजे प्रभिन कौ को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सब कुछ तुमकी पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सब जीवन अबनासी कहो नानक मन अंध पया है काटी जमकी फासी सारग महला पंजवा मेरो मान जड़ का तुझे सुमार है हम बारक दीन पिता प्रा मेरे ज्यो जाने त्यो पारे रघाओ जब भूखो ता भोजन मांगे हकाए सुख कनारे ताब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटकत हुए रवारे कवन बसेरो ता दासन को

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज समायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रघाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा।

प्राण जीवन तन चेमृत अंधकना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

अंध कूप में पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशर

प्रसेव करत अनसेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

मन तन धन तो तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। जो तू रखे ते वखी रहे तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई।

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ प्यार कुंट दहदिस जल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो सत सत हर सत स्वामी सत साह संगे हो सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम ना

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सजोए। सारग मोहल्ला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचे मितन सब स्थार रगाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, किरनार बिन बसाहिर दे बौर जन्म ना मार।

जाको मेल लए प्रव नानक थे जन दर गए माने। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार। मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार रखाओ। खात पीवत हस्त सोवत औध बिती असार। नरक उधर परमंत जलत जमे की निसार। पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार। बिना सदगुर बूझ नाही ता मोह महा अंधार। बेट खोरी खाए मुठ कितना सिर जनहार। गोविंद गुप्त होए रहे न्यारो मातंग मत अंकार। कर कृपा पुरु संत राखे चरण कमल आधार। कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार। सारग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओ अंकार। सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किं करी विकार। देखरी विचार गुर शब्द त्याए मह।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पय गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बिरागेगी।

काम करी सब त्याग के हों शरण पर होगी। नानक स्वामी घर मिले हों गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुखो उपदेसिया नानक सेव एक हरी। सारग मोहल्ला।

मोहन मोह लिया मन मोर बड़े पाग लिव लागी साज विचार केलब दो काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पौ पंजन अवर न जानिया दूजा मनुआ मार निर्मल पचीनिया हर सरते अदकाई एक बन में अवर न जाना सदगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एक को जानिया तुबर परे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो कथिए कहो कहा वे सोई नानक दीन दयाल हमारे अवर न जानिया कोई सार्ग महला तीजा अष्टपदिया कर पहला एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद मन मेरे हर के नाम वडाई हर बिन अवर न जाना कोई हर के नाम मुक्त गद पाई रगाओ शब्द पौ पंजन जमकाल निखंजन हर सेती लिवलाई हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहा सुमाई भगतां का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बड़ाई निज करवासा सदा हर सेवन हर दर शोभा पाई मानमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथे कहानी गुरमत नित हर मन वसया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई सदगुर में रही गे सदे अपने जिन हर सेती लिव लाई मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई हर सर सागर सदा जन निर्मल नावे सहज सुपाई शब्द विचार सदा रंग राते होमे तृष्णा मारी अंतर ने केवल हरव्या हवे आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पाणे दुबदा मैल न पावे जग झूठी गुण अवगुण ना पछाणे आपे मेल लय अकथ कथिए सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच सुमाणे।

नानक से जन थाए पाए गए जिनकी पद पावे लेखे सारग महला पंजवां अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल छत्रपद बीठा रखाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कैन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैद जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किस ही संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जंस पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा जो कुछ करना तू आपे करना मसलत काहू दीनी आनक जिदन का करे दिखाए साची साखी तीनी हार भगतां का राखे अपनी दीनी नाम डाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्स देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवां अष्टपदी कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मैं नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

पौड़ी गुरमुख चल तरचाए होन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उचर है हर मन मसाया सगत गई प्रम कटिया शिव जोत जगाया।

जोगी का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, अराजे चुली न्याव की पढ़िया सच ध्यान, पानी चेतना तोपई मुख पीते तिख जाए, पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए, पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाए सुने नौन दि मिले मन चिंदिया पावे, नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे, नाए सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे, गुरमती नाव पाईए नानक गुण गावे। श्लोक महला पहला, दुख ज जमन दुख मरण, दुख वर्तन संसार, दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार, दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए, दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए, नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए, दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए। महला पहला, नानक दुनिया पस रंग पसु हु पस खेहे, पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे, जा जियो विच्चों कड़िये पसु पर आ जाए, अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए, पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे, नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे, नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे, नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे, नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे। श्लोक महला पहला, कर नारायण सभा नाल

कर कर हेत पधाए दे पर दर्व चुराया पुत्र कलत्तर ना विस है बो प्रीत लगाया वेख दिया गई माया तोए गई पछते पछताया।

आपे सृष्ट उपायन, आप करे विचार, नानक किसनु आखिए, सब वरते आप सत्यार। महला तीजा, हर गुरमुख तिनी आराध्या, जिन कर्म प्राप्त होए, नानक हो बलिहारी तिन कौ, जिन हर मनवस्या सोए पौड़ी, आस करे सब लोक, बहु जीवन जानिया, नित जीवन कौ, चित गढ़ मंडप सवारिया, वल वंच कर उपाव,

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचे समझे नहीं मूड, तान तरती तन हो गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूते हो ही आहिरस नाम जपोरे प्राणी मैले खच्चे हो ही जे ही रुत काया सुख तेगा ते हो जे ही देही नानक रुत सुहावी साई बिर नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

आवे बरस कना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही अरे गुरमोही मन हरस लीना रहाओ सह सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पई सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया अवगुण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सुहाग हरी सोग विजोत कदे न व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आमन जान नहीं मन निचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन।

तुनु सम कर जान बुरा पला संसार सुध बुध सुरत नाम हर पाई है सद संगत गुर प्यार तहे निसला हर नाम पदार्थ गुरदाता देवनहार गुरमुख सिख सोई जन पाए।

जिस में नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस साचै नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथदान नित नित लेहो।

प्राप नारायण सोई। गुर प्रसाद परम पद पाया वड्डी वड्याई होई। आन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई। मान रहे

मन की विद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अन दिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपहाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड़ मध्य किसे बुझाई, आपे बगसे देव डियाई, जो तुर मिलिया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई।

जन के हम हाट बिहाजे जिस हर घर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुरमत मैल हरे हर जन को घर भूख लगानी जन तृपे जा हर गुण विचरे हर का जान हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन तरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख टरे मलार महला चौथा जितने जी जंत प्रभ कीने इतने सिर कार लिखावे हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कार लावे सतगुर हर घर नाम दिरड़ावे हर बोलो गुर के सिख मेरे पाई हर फौजल जगत तरावे रघाओ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे घर प्रापावे हर की सेवा सतगुर पूजो कर कृपा आप तरावे परम फूले अज्ञानी अंधले प्रम प्रम फूल तोरावे निर्जु पूजे मड़ा सरेव है सा बिरती काल गवावे ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए हर घर कथा सुनावे तिस गुर को शादन पूजन पाठ पटंबर बहु विद सदकर मुख संचो तिस पुन की फिर टूट न आवे सतगुर दियो प्रतख हर मूर्त जो अमृत भजन सुनावे नानक पाग पले तिस जन के जो हर चरणी चित लावे मलार महला चौथा जिनके हीरे बस्यो मेरा सतगुर ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन विसे औ तिनके सदबल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूग सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रखाओ हर की दास साध सगा जान जिन मिलिया ले जाए परांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़े चुन हंसला त्यों देही ते चुन काढ़े साधु हों में तात जिनके प्रीत नाही हर हृदय ते कपटी नार नित कपट कमात तेन को क्या कोई देख वाले कोई आप बीज आपे ही खांत हर का चेहन सोई हर जन का हर आपे जन में आप रखांत तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत मलार महला चौथा आगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड भागी संग साधु पार पया।

रहाउ दुश्मन हते दुखी सा व्यापे हर शरणाई आया रखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा केलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वसिया।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाओत पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवां, कानघार बरस सगल जग छाया। पय किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने वारे, बौर न कतहू ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवां, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चित्ते उलास आस मिल।

आतन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरव काढ़े है शाट। कल कलेस मिटे दास नानक बौर न जूनी माट। मलार महला पंजवा बहुविध माया मोह हुए रानो। कोड़ मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो। रखाओ एत उत डोल डोल शरम पायो तन तन होत बिरानो। लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रतारो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा दुष्ट मोए बिख।

की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार मखला पंजवा गुरसरनाई सगल निधान, साची दरगे पाएगे मान, परंप दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा साला हे, नाम निधान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सदगुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए, जन्म मरण दुख ते राखे, माया बेख फिर बौड़ ना चाखे, गुर की महिमा कसन ना जाए, गुर परमेश्वर साचे नाए, सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाई गे वड़ भाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गामनी नीकी रहाओ तोनत ललत गुनाग अंक पांत बहुविध रूप दिखामनी निकी गिर तार फल जल पावन परपुर कट कट लालन शावनी निकी साध संग रामैया रस पायो नानक जाके पावनी निकी मलार महला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबलो दर्श पेखेओ गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक सरण द्वारे मलार महला पंजवां बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो मिल संत।

गाई। प्रयो प्रयो करे सबे है जेती, गुर पावे प्रयो पाई। प्रयो नाले सदगी सच संगे, नदरी मेल मिलाई।

अंध नहीं सूझे, बद्धक कर्म कमावै, सदगुर मिले तां सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावै, निर्गुण

मान रे सतगुर सेव समाए वडे पागुर पूरा पाया हर हर नाम त्याए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने पाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के पाने सतगुर पेटिया सब जन्म सवारन हार वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड़ अवर न कोए आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पति आए हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए मानमुख परम भुलाया बिन पागां हर तन ना पाए त्रै गुण सभा तात है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए मरार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम साए साची गत साचे चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाईए

महा पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, किरपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लिओ सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रभ जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जियो एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक करंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच सरनाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन घराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महामंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक सरण तिन की जिन

पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया, ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया, श्लोक महला दूजा सावन आया हे सखी।

पौ उपज पाइये मोह द्वार, पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार, पाए ते पै जल लंघिए गुरमति विचार, पाए ते निरपो पाइये जिसदा अंत न पारावार, मनमुख पै की सार ना जाननी तृष्णा जलते करे पुकार, नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरतार, श्लोक महला पहला रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, लबे माले कोल मिल मचल ऊंगे सौण पलंग, पौके कोप खुआर हुए

जन्म बिरतिया अंत न पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गुबार तिन सच ना पाया चले नाम सार तामन तत्या बल्दी अंदर तेल दुबदा कत्या।

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छे सर्व शास्त्र बहुरूपिया

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बार नीरे संत जन करत नहीं पान तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे।

गढ़ वेड़ी, गुर के शब्द लियो गढ़ जी तरखाओ, मिथ्या परम परम भो प्रम्या, लुब्धो पुत्र कलत्तर मोह प्रीत। जैसे तरवर की तोष छाया, फिर मैं बिनस जाए दे पीत, हमरे प्राण प्रीतम जन ऊतम, जिन मिलिया मन होए प्रतीत। परते राम रविया कट अंतर, अस्थिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर घर जाए मिले हर प्रीत। हम वो पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर घर नाम दियो मुख औहद, जन नानक पतत पुनीत। कानड़ा मोहल्ला चौथा जप मान, राम नाम जगन्नाथ। घूमन केर परे बिख बिखया, सतगुर काढ़ लिगे दे हाथ रखाओ। स्वामी अपाए निरंजन नर हर, तुम राख लियो अंपा पीपाथ। काम क्रोध बिखया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड़ पुरख वड़ अगम अगोचर, हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू पर परय परम पर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए, सत संगत मिल साधु पाथ। हर घर कथा सुनी मिल संगत, हर घर जप्यो अकाथ कथ काथ। हमरे प्रभु जगदीश गुसाई, हम राख लेहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभु करो कृपा रखो जन साथ। कानड़ा मोहल्ला चौथा पड़ताल कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन जापो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कर टकसाल। हर हो कृपाल रहाओ, तुमरे गुण अगम अगोचर। एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल।

बल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाव, कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर दुआ।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

मेर सर्व सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराध। गुर सतगुर चरणी लाग हर पावो मन अगाध जग जीतो हो गुर किरपाद रघाओ। अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे घर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास। प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुझ जंत मिलास। अवर ओट मैं कोई न सूझे एक हर की ओट मैं आस। क्या दीन करे अरदास जो सब कड़ प्रभु निवास। प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहित है तुमरा। हौ बल बल सद बल जास कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे। नाम निध नाम निदान हर केर हर रंग रंग रंग अनुपेर कहे रे मन मोहे मगनेर। नैनो देख साध दरसेर सो पावे जिस लिखत ललेर रहाओ। सेवो साध संत चिरनेर बांचो तूर पवित्र करेर अड़सड़ मज्जन मैल कटेर सा सा त्यावो मुख नहीं मोर। कि संग न चाले लाख करोर प्रभु जी को नाम अंत पकरोर। मनसा मार एक निरंकेर सगल त्याग है पाओ दूजेर। कामन कहा हौ गुण प्रे तेरे वर्ण सा को एक टोलेर दर्शन प्यास बहुत मन मेर।

संतना हर संतना हर संतना की रेन हियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े हो।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रूप व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिक बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यो मोस्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिले जो पावतो जन नानक ठाकुर रहो समाए।

अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ कनक मंदर पाट सेज सखी मोहे नाहे इनसे उतात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बेहात तानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रे प्रीत प्यारो मोरो अरहाओ गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो पांच दूतन स्यो संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमन बिग सोरो।

नारायण सगले जंत पजो गोपालय, जब तब संजम पूर्ण कालय, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सबल जन्म सबाया, गोविंद गायगे नित त्याई है, प्रवान सोई आया, जब ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चालय, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बंधौ पालय, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मेरे परमानंदा, प्रामिले स्वामी सुख गामी, इस मन की पुनिया, बजी बधाई सहजे समाई, बौड़ दुख ना रुनिया, ले कंठ लाए सुख दिखाए, विकार बिन से मंदा, बिनवंत नानक मिले स्वामी, पुरख पर

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर धीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला श्लोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केतविद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा श्लोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकया साव कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लार भगत वसिखया श्लोक महला चौथा राम नाम राम रब रहे राम रामो राम रमीत घड़कड आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निट बसे जग

उत्तम घर प्रव नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दे सबो लह गया, जा नाव गुरु घर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता, श्लोक महला चौथा, मन अंतर होम में रोग है, ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीश सर करते, अपरंपर पुरख अतोल।

हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी घर प्रव जाने और कोई निंद करे घर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान हर सेवा ते कालज होए ना सके चरणी आए पवे हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ता को सुमत दे पैकाने ता को कोई अपर न सके जा की भगत मेरा प्रमाने हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ता ते जन कौ अंध पया है रिद्ध शुद्ध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समरथ स्वामी एक मांगो तु पासो वरदाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुझे हर चिराने।

सदगुर प्रसाद तेरे मान हर घर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हे समान जद कता तद पेखिए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण महला पंजवां गुरनाद तुन आनंद वेद

परस निपरस पै साधु जन, जन हर भगवान दिखीजे सागत सूत बहु गुरजी परया, क्यों करतान तनीजे तंत सूत केश निकसे नाही, सागत संग ना कीजे सदगुर साध संगत है निकी, मिर संगत राम रवीजे अंत रतन जवे हरमान, गुर किरपा ते लीजे मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी,

चरण तल दीजे, गुरमुख जोध पली शिव नीकी, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके

आस बसीजे निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने नित साखा हरी जड़ीजे तरम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बाजग दीजे एक जोत एको मन वसया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजे आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजे ना बिना नगटे नर देखो तेन कस कस नाक वढ़ीजे सागत नर अंकारी कहिए बिन नावे त्रिग जीवीजे जब लग सास सास मन अंतर तद बेगल शरण परीजे नानक कृपा कृपा करता रहो मैं साधु चरण पखीजे कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तुवीजे केल बेख दयन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ मंगत जन दीन खरे दर ठाडे आतर सुन को दान दीजे त्रागे त्राए शरण प्रवे आए मुको गुरमत नाम जरडीजे काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उड़ जूझ करीजे अंगीकार करो रख ले वो गुरपूरा काड कढ़ीजे अंतर अगन सबल अद बिघया हे शीतल शब्द गुर दीजे तन मन सांत होए अदकाई रोग काटे सूख सवीजे जो सूरज करण रविया सरबठाई सब घट घट राम रवीजे साधु साध मिले रस पावे तत निरकर बैठिया पीजे जन कौ प्रीत लगी गुरसेती क्यों चकवी देख सुरीजे निरखत निरखत रैन सब निरखी मोह काढ़े अमृत पीजे सागत स्वान कही गए।

बनाए बहु रंगी सिद्ध उपाय प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम घट घट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुर सरनाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़ पू

लेव उर्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वडे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती मोहल्ला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मेल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवां विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख नाम सार हो सेव ओ सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समागे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत ता सखाई जे कोई न होवे कोड अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम।

अपार ब्रह्म आराधि अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा। सिमरत नाम किलब सब नासे, सत नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै,

आए भगत हर सो मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रगुणित गाई है, कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, चेतनवंत सेई सच साहा। हर की दरगहे नाम साहा, हर हर नाम जपो मन मीत। गुरपूरा पाईगे वडभागी, निर्मल पूर्ण रीत। रखाओ पाया लाभ वजी वाधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई। सफल जन्म जीवन प्रवान, गुर प्रसादी हर अंगमान। बिनसे काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उतर है पार। प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला। गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै। दुख दर्द सब ताका नसै,

चरणा निरपय साध परे हर सरना आनंद सहज रस सुख कन्हेरे दुश्मन दुख न आवे नेरे गुर पूरे अपने कर राखे हर नाम जपत केलबग सब लाथे संत साजन सिख पय सुहेले

रंगी, बिन नावे को साथ ना संगी। ज्यो मन देखै पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। जैसा कर्म तैसी लिव लावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे। राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए। सतगुर भेटै सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिव लाए। सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे। निरकरवास अमर पद पावे, तां दर सचै शोभा पावे। गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई। होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई। इस

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संयम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जंपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

मीत साजन परवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभाती बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मरण जीवन की शंका नासी अपन रंग सहज प्रगासी प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा रहाओ जय आनंद दुख दूर पयाना मन मानक लिखता तुलकाना जो किश हुआ तो तेरा भाणा जो इव बूझे सो सह समाणा कहत कबीर केल बख गए खीणा मन भया जग जीवन लीना प्रभाती अलो एक मसीत बस्त है अवर मुर्ख किस केरा हिंदू मूर्त नाम निवासी

जो मान्यो देहे सो तो तेरो होए है खेहे, क्यों ना हर को नाम लेहे। मूर्ख नलाज रे आराम भगत ही आन, चाड़ दे तै मन को मान, नानक जन ए बखान।